ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। कुमामोतो प्रीफेक्चर में हालिया जलजिले से मुतासरा गैर मुल्कियों के लिए कई जुबानों में मुतरजम की सहूलियात दस्तियाब हैं। प्रीफेक्चर की हुकूमत आमतौर पर यह सहूलत रहायशी मराकज में क्याम पजीर अफराद और दौरा करने वाले गैर मुल्कियों को फराहम करती है। प्रीफेक्चर के हुकाम का कहना है कि ऐसे गैर मुल्की बाशिंदे और सियाह जिन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो वो भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस के इस्तेमाल की मिसालों में तिब्बी इदारों और गैर मुल्कियों को तिब्बी बातचीत या मुआयने के दौरान बातचीत करने में मदद और गैर मुल्की

0: सामने बर्फ से बना हुआ एक शानदार किला है।
1: तो आइए सबक नंबर 22 का मकालमा सुनते हैं।
2: すごい! ダム, 見て!
3: ああ、 大きいですね! 初めて見ました!
4: どうやって作ったんだろう?
3: 綺麗ですね! みんなで写真を撮りましょう!
2: いいね!
1: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
0: मियाँ बर्फ से बने शानदार किले को देखकर मभूत रह गई है। वो ताम से कहती है,
2: सुगोई।
1: शानदार।
2: ताम, मीते मीते।
1: ताम, देखो देखो।
0: ताम भी फन पारे से मुतासिर है।
3: आ, ओकी देसने।
1: ओ, बहुत बड़ा है।
3: हजुमेते मीमास्ता।
1: मैंने पहली बार देखा है।
0: काइतो बर्फ के उस फन पारे को देखकर कहता है,
4: दो यत्ते त्सुकुत्तांदारो।
1: किस तरह बनाया होगा?
0: ताम कहती है,
3: किरे देसने।
1: बहुत खूबसूरत है।
3: मीना दे शशिन ओ तोरिमाशो।
1: सब साथ मिलकर एक तस्वीर बनाएं।
0: मिया को ये बात पसंद आती है। वो कहती है,
2: ई ने।
1: अच्छी तजवीज है।
0: मैंने भी सपोरो बर्फ मेले की बहुत तारीफ सुनी है।
1: ये शानदार मेला हर साल फरवरी या उसके करीबी दिनों में मुनक्किद होता है। इसमें कुदरती और मसनूई बर्फ से बनाए गए कई सौ फन पारे होते हैं। बास बड़े शपारे तो 15 मीटर तक बुलंद होते हैं।
0: बर्फ से इतने बड़े बड़े मुजस्मे और दीगर फन पारे बनाना यकीनन एक मुश्किल काम होगा।
1: फन पारे बनाने वाली टीमें उस मुकाम पर किसी इमारत की तामीर की तरह बांसों या पाइपों से परात बांधती हैं और बर्फ ढेर करने के लिए क्रेन इस्तेमाल करती हैं। पहले मुजस्मे या किसी इमारत वगैरह के फन पारे को उमूमी शक्ल दी जाती है और उसके बाद बारीक तराश खराश की जाती है। फन पारों की तकमील में कई माह का अरसा लगता है।
0: फिर तो सपोरो बर्फ मेला वाकई देखने से ताल्लुक रखता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, तस्वीर बनाएं।
3: शशिन ओ तोरिमाशो।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मिलकर कोई काम करने की तजवीज दे सकते हैं।
1: शशिन के मायने है तस्वीर। शशिन ओ तोरिमाशो, तस्वीर बनाएं या तस्वीर खींचें। आज का नुक्ता, आइए मिलकर ऐसा करें, यह कहने के लिए फेल की मस शक्ल के मस को माशो में तब्दील किया जाता है। कलीदी जुमले में शाशिन ओ तोरू यानी तस्वीर खींचना का फेल तोरू, जिसकी मस शक्ल तोरी मस है, माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी तोरी माशो।
0: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
5: तोरी माशो, शाशिन ओ तोरी माशो, शाशिन ओ तोरी माशो।
0: जी सामेइन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: और अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक खातून दोस्तों को मिलकर दुकान में दाखिल होने की तजवीज दे रही है।
6: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
3: ई देसने।
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
0: आए इस दुकान में दाखिल हों।
1: कोनो मिसे यानी ये दुकान, इसके बाद का हर्फ जार नी सिमत को जाहिर करता है, चुनांचे इसका मतलब हुआ इस दुकान में। हायरू के मायने है दाखिल होना। फेल हायरू की मस शक्ल है हायरी मस, जो यहाँ माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी हायरी माशो।
3: ई देसने।
0: अच्छी तजवीज़ है।
1: ये जुमला मुखातिब की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ई तो आपको याद ही होगा यानी अच्छा। जुमले के आखिरी हिस्से का दिस इसे शाइस्ता बनाता है और बिल्कुल आखिर में ने इत्तेफाक को जाहिर करता है।
0: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
5: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
1: अब एक साथ कुछ करने की दीगर तजावीज के साथ मशक करते हैं। आप सापोरो के मशहूर सैयाहती मकाम घंटाघर जाना चाहते हैं। घंटाघर की जापानी है
5: तोकेदाई, तोकेदाई।
1: फेल जाना यानी इकू की मस शक्ल है
5: इकीमास, इकीमास।
1: तो आए घंटाघर चलें को कैसे कहेंगे?

0: 計台に行きましょう。時計台に行きましょう。
1: आप चलते चलते थक चुके हैं और कहना चाहते हैं आए कुछ देर आराम करें। कुछ देर को कहते हैं
2: चोट्टो चोट्टो।
1: पहल आराम करना की जापानी है यासुमु और इसकी मास शक्ल है
2: यास्मिमास यास्मिमास।
1: तो सामीन कोशिश करें
3: चोट्टो यास्मिमाशो चोट्टो यास्मिमाशो।
4: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में मियां ने बर्फ के फनपारे को देखकर कहा था। ये सिर्फ एक मुख्तसर सा लफ्ज है लेकिन है बहुत कारामद, इसे याद कर लें।
5: सुगोई
1: सुगोई के मायने है शानदार या हैरत अंगेज। ये कोई चीज देखकर हैरत से दंग रह जाने या इंतहाई मुतासर होने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है।
4: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
6: सुगोई
5: सुगोई
7: सुगोई।
4: सामीन अब आपकी बारी है तो सुनिए और दोहराइए।
2: सुगोई।
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम मिलकर तस्वीर बनाने की तजवीज देती है।
5: सुगोई ताम मीते मीते ओकी देस ने हजुमेते मिमाशिता।
6: どうやって作ったんだろう。
5: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
8: いいね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
4: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। आज का मौजू जापान का सरे फहरिस्त सियाहती मकाम होक्काइडो है।
1: होक्काइडो जापान का सबसे शिमाली प्रीफेक्चर है। वहाँ वसी और रीज मैदानी इलाके भी हैं, दलदली खत्ते भी, सैरंगेज खूबसूरत झीलें भी और कुदरती गर्म चश्मे भी। इन कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ जाती है। मुल्क के बाकी इलाकों के बरक्स होक्काइडो में मौसम में बरसात नहीं होता और गर्मी भी कम पड़ती है। ये खसूसियात इसे ज्यादा मकबूल बनाती हैं।
4: अच्छा अनवर साहब, होक्काइडो के कुछ काबिल-ए-दीद मकामात के बारे में भी बताएं।
1: फुरानो में लवेंडर के खूबसूरत खेत एक मकबूल मकाम है। जुलाई में पहाड़ी ढलानों पर तहद निगाह हल्के उदय रंग का कालीन सा बिछ जाता है।
4: वाह, ये मंजर तो वाकई खूबसूरत होगा।
1: यकीनन। इसके अलावा यूनेस्को के आलमी कुदरती विरासत मकाम शिरेतोको में गिलहरियां और लोमड़ियां वगैरह जंगली हयात की बेशुमार अकसाम पाई जाती हैं। अगर आप कश्ती का टूर लें तो व्हेल मछलियों और भूरे रीछों का नजारा भी मुमकिन है।
4: सुगोई, हैरत अंगेज। वैसे होक्काइडो की सर्दियाँ तो मुंजमद कर देने वाली होंगी।
1: जी हाँ, सर्दियों में वहाँ शदीद बर्फबारी होती है और दर्जे हरारत मनफी होता है, लेकिन इसी वजह से बर्फ मेले या सरमाई खेलों से भी लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। और असाहिकावा शहर के असाहिया चिड़ियाघर में बर्फ पर कतार में चलते हुए पेंगुइन भी देखे जा सकते हैं।
4: शानदार। बस तो फिर होक्काइडो को मैंने उस फहरिस्त में शामिल कर लिया जहाँ मैंने मुस्तकबिल में जाना है।
1: होक्काइडो के खाने भी शानदार हैं। सिर्फ समंदरी खुराक ही नहीं बल्कि वहाँ रामेन और मटन की डिशें भी मकबूल हैं। इसके अलावा होक्काइडो ताज़ा सब्जियों और फलों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ के युबारी खरबूजे, मकई और आलू खुसूसन मशहूर हैं। होक्काइडो का सफर हर लिहाज से पुरलुत्फ होगा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 29 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों को हृदयघात हुआ। उन्होंने बताया कि 64 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े बुधवार शाम 4 बजे तक के हैं। मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में भूकंपीय गतिविधियों का स्तर उच्च बना हुआ है। अधिकारी लोगों से अगले एक सप्ताह तक तेज झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार मंगलवार को शाम 4:27 के आसपास 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इसका केंद्र कुमामोतो क्षेत्र में 16 किलोमीटर की गहराई में था। उकी शहर और हिकावा नगर में आए भूकंप की तीव्रता 7 दर्ज की गई, जो जापान के 0 से 7 के भूकंपीय पैमाने पर उच्चतम स्तर है। कुमामोतो शहर के मिनामी वार्ड, यात्सुशिरो शहर, उतो शहर और 2 अन्य नगरों में 6 उच्च की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। कामी अमाकुसा और कोशी शहरों जैसे कुछ स्थानों पर भूकंप 6 निम्न दर्ज किया गया। क्यूशू क्षेत्र के कई अन्य हिस्सों में भूकंप की तीव्रता 5 उच्च और 5 निम्न थी। बुधवार शाम 6 बजे तक प्रीफेक्चर में 1 या उससे अधिक तीव्रता के 207 झटके आ चुके थे। इनमें से 3 भूकंपों की अधिकतम तीव्रता 5 निम्न थी। अधिकारियों ने अगले एक सप्ताह के दौरान 7 तक की तीव्रता के भूकंपों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में बड़े भूकंप आने की विशेष रूप से अधिक संभावना है। काशिमा नगर के एक शॉपिंग सेंटर इओन मॉल कुमामोतो में बचाव अभियान जारी है। भूकंप और उसके बाद हुए विस्फोट से परिसर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण दूसरी मंजिल ढह गई। कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार दोपहर 2 बजे तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1 अन्य व्यक्ति को हृदयघात हुआ है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 6 अन्य लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें से 5 घायल हैं और 6वें व्यक्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इओन के अधिकारियों ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। कंपनी के अध्यक्ष ने कहा कि वे जान गंवाने वालों के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं और शोक संतप्त परिवारों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक निप्पॉन पेपर इंडस्ट्री के यात्सुशिरो कारखाने में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोगों को घायल अवस्था में बचाया गया है। 4 लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। भूकंप के कारण निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज की चिमनियां गिर गईं और अन्य नुकसान भी हुआ।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भूकंप से प्रभावित विदेशियों के लिए 24 घंटे की बहुभाषी टेलीफोन अनुवाद सेवा उपलब्ध है। प्रीफेक्चर सरकार सामान्यतः आवास सुविधाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए ये सेवा प्रदान करती है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले विदेशी निवासी और पर्यटक भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा जांच या परीक्षण के दौरान इस सेवा का उपयोग संवाद करने में सहायता और विदेशी नागरिकों द्वारा किसी चिकित्सा संस्थान से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। ये सेवा अंग्रेजी, नेपाली, हिंदी, बांग्ला और उर्दू समेत 22 भाषाओं में उपलब्ध है। ये सेवा निःशुल्क है, लेकिन पूर्व पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण प्रक्रिया कुमामोतो प्रीफेक्चर सरकार की वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ताओं को सेवा केंद्र से एक समर्पित टेलीफोन नंबर मिलेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और इसराइल के नेताओं से बातचीत की है। ये बैठकें ऐसे समय में हुई हैं जब ट्रंप दोनों क्षेत्रों में जारी संघर्षों पर अपना अगला कदम तय करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में मंगलवार को ये वार्ताएं बंद दरवाजों के पीछे अलग अलग हुईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनकी और ट्रंप की अच्छी बैठक हुई। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमरीका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन लाइसेंस पर चर्चा की और रूस के साथ शांति की दिशा में नए सिरे से राजनयिक प्रयास शुरू करने की उम्मीद जताई। बाद में ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की। फरवरी में ईरान पर सैन्य अभियान शुरू करने के बाद दोनों नेता पहली बार आमने सामने मिले। इजरायली मीडिया खबरों के अनुसार दोनों नेताओं ने मुख्य रूप से ईरान पर चर्चा की और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की प्रतिबद्धता दोहराई। इजरायल सरकार ने ट्रंप, नेतन्याहू और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की एक साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर जारी की। ऐसा लगता है कि इसका मकसद दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाना था। खबरों के मुताबिक लेबनान को लेकर अमरीका और इसराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। जापान सरकार की एक समिति ने प्रति घंटा न्यूनतम वेतन को लगभग 5% बढ़ाने की सिफारिश की है। 55 येन की ये वृद्धि पिछले वर्ष के बाद इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी होगी। ये वृद्धि देश भर में वेतन में हो रही बढ़ोतरी के बीच आई है। श्रम मंत्रालय की समिति का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय औसत दर को 1176 येन यानी लगभग 7.18 डॉलर करना है। ये लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष की 66 येन की वृद्धि से कम है, लेकिन फिर भी ये 1978 के वित्त वर्ष के बाद दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि होगी जब समिति ने सिफारिशें करनी शुरू की थी। समिति ने वेतन में राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वृद्धि को ध्यान में रखा, लेकिन साथ ही मुद्रास्फीति की धीमी दर को सिफारिश की कम दर का एक कारण बताया। अब प्रीफेक्चर समितियां अंतिम आंकड़ों पर चर्चा शुरू करेंगी। सरकार 2030 के दशक की शुरुआत तक न्यूनतम वेतन के राष्ट्रीय औसत को 1500 येन यानी 9.15 डॉलर तक करना चाहती है।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद 12 लोगों की मौत हो गई है और 64 अन्य घायल हो गए। वहीं जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में भूकंपीय गतिविधियों का स्तर उच्च बना हुआ है। अधिकारी लोगों से अगले एक सप्ताह तक तेज झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।